बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस

आया जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।

यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस साद में आखिर विरदे।

ये जन्नत भी जहन्नम भी ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ल जलालुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।